0: अरे क्या बात है,
1: मैं शायर तो नहीं,
0: मैं आशिक तो नहीं, मगर एक हसी जब से देखा मुझको तुझको, मुझको आशिकी आ गई है। Yes, I am no lover, but since I saw you, I

मुझे प्यार की जिंदगी देने वाली यस ओ यू गिवर ऑफ लव नेवर गिव मी सॉरो ओनली गिव जॉय बर्थडे ग्रीटिंग्स टू